0: नमस्ते वनकम सस्याकाल, हमें सुन रहे आप सभी को हैप्पी डे। स्वागत है आप सबका एमओपी कम्युनिटी रेडियो 107.8। आज का हमारा विषय है मोबाइल का जमाना है।
1: सीन वन, सुबह कमरे में।
2: राहुल उठो बेटा, कितनी देर सोएगा?
0: क्या माँ, थोड़ी देर तो सोने दो।
2: थोड़ी देर? सुबह के 9 बजे और तू थोड़ी देर कहता है?
0: 4 बजे तो सोया माँ मैं, और तुम 9 बजे उठा रही हो।
2: वाह, मेरा बेटा तो पढ़ाई कर रहा था।
0: नहीं माँ, फोन पे बात करते करते इतनी देर।
2: उठ जा।
0: ठीक है, गुस्सा मत करो।
1: उठकर फिर से मोबाइल यूज करने लगता है।
2: भगवान, आजकल के बच्चों तो उठे तो मोबाइल, सोए तो मोबाइल, बस हर दम मोबाइल। एक दिन इस मोबाइल के तो मैं।
0: अच्छा माँ, शांत, नाश्ता रेडी करूँ, मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए।
2: अब लेट हो रहा है? इतनी देर जब मोबाइल में चैट करता तब क्या हुआ?
0: माँ, आपको तो हर बात में मोबाइल की ही गलती दिखती है।
1: ब्रश करते हुए फोन यूज करता है और नहाते वक्त भी फोन में गाने सुनता है।

0: होते हुए भी फोन पे रहता है, फिर नाश्ते के लिए हॉल में आता है।
1: नाश्ता और कॉफी टेबल पर रखा है, ले लो।
2: हाँ ठीक है।
0: शक्कर की जगह नमक डालते हुए कॉफी पीने लगता है।
2: छी!
1: फोन को छोड़ेगा तो दूसरी चीज दिखेगी ना।
2: अब छोड़ो, मैं निकलता हूँ कॉलेज के लिए।
0: हेडफोन डालते हुए गाड़ी चलाता है। सीन टू, कॉलेज में। क्लास में भी फोन नहीं रखता, प्रोफेसर आ जाता है और मजबूरन उसे फोन रखना पड़ता है।
3: देख आ गया ये सर खाने।
0: मन में,
2: सलोनी ने क्या रिप्लाई किया होगा, मानी होगी क्या वो डेट के लिए?
0: अचानक सर राहुल को सवाल करते हुए,
2: क्या मान गई वो?
0: तू क्यों इतना हंस रही है, तेरा भी हाल वैसा ही तो है।
2: और तू कम है, तू भी तो पूरा दिन मोबाइल पे रहती है।
0: वैसे देखा जाए तो आजकल तो सभी इस मोबाइल के गुलाम हैं, जिससे देखो वो मोबाइल पे रहते हैं।
2: हाँ, दो दिन पहले मैं अपने एक चाचू के घर गई थी, उनकी लड़की रिया सिर्फ 2 साल की है, वो पूरा टाइम मोबाइल पे गेम्स खेलती रहती है, उसे मोबाइल ऑन करना, लगाना, ऑफ करना सब आता है। मैं तो हैरान रह गई।
0: और अपन डॉक्टर या लूडो कैरम खेलते थे।
2: ये आजकल के बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी मोबाइल चाहिए, उसमें राइम्स या फिर कार्टून या गेम्स खेलते खेलते ही खाना खाते हैं।
0: बच्चे ही नहीं, बड़े भी इस मोबाइल का शिकार है, एक ही घर में एक दूसरे को बुलाने के लिए भी फोन का इस्तेमाल करते हैं।
2: हाँ, लोगों के पास खाना हो या ना, पैसे हो या ना, पहनने के लिए कपड़े हो या ना, लेकिन मोबाइल तो जरूर होता है। पहले कहते थे रोटी कपड़ा मकान जरूरी था, पर आज तो मोबाइल का होना जरूरी हो गया है।
0: क्या तुझे मालूम है दुनिया में जितने वॉशरूम है उससे ज्यादा लोगों के पास फोन है?
2: क्या सच्ची?
0: बिल्कुल सच। और ऐसे ही चलता रहा तो सोचो इन सब वेस्ट मोबाइल का कहाँ रखेंगे और इसका असर कितना होगा हमारी धरती पर।
2: हाँ, मोबाइल का वेस्ट तो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है और कितना प्लास्टिक यूज होता है, ये तो एक डर है अपनी धरती को।
0: चलो अब लोगों से जानते हैं उनका इस पर और फोन एडिक्शन पर क्या विचार है।
4: Yes, I too believe in the fact that mobile phones are more than washrooms. It really creates a negative impact on personal contact, especially teenagers at dining table, completely disinterested in the family time. They usually not giving time to family because they're really like busy in the social network or even messaging with someone else. They really don't have any time to family. At school also, and some people used to use mobile at while crossing the roads and or driving vehicles, and the radiation which caused by this mobile network, it really affect the human health. It the more addiction of to the mobile, some people are really addicted to the phone. It really cause eye scan cancer, DNA damage, cardiac problem. Nowadays, the mobile phones have dehumanized the dynamic human contact. Some people don't know how to interact in real life anymore.
5: मैं भी मानती हूँ कि शौचालय कम है मोबाइल फोन के मुकाबले में। आजकल मोबाइल फोन का इतना चलन है कि बच्चे परिवार को भी समय नहीं देते हैं, यहाँ तक कि बच्चे पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ तक कि गेम इतना महत्व हो गया कि बाकी सब पीछे छूट गए हैं। सिर्फ बच्चे ही मोबाइल के शिकार नहीं हुए बल्कि बड़े भी मोबाइल के बगैर नहीं रह पाते, जिसमें आदमी औरत बड़े बुजुर्ग यहाँ तक कि घर के नौकर भी मोबाइल के शिकार हैं। उससे बच्चों की पढ़ाई खाना पीना और घर का ध्यान नहीं रख पाते, जिसकी वजह से नन्हे मुन्ने बच्चे भी मोबाइल के आकर्षित हो जाते हैं, जिसकी वजह बहुत सी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि कैंसर, भूलने की बीमारी और आंखों की रोशनी पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मगर ये सब छोटी बीमारी है, इससे बड़ी बीमारियां भी आती है। कुछ चीज़ों पर मोबाइल जरूरी है, जैसे कि जानकारी प्राप्त करने के लिए, कुछ नया सीखना हो तो, हर रोज की ताज़ा खबर की जानकारी प्राप्त करनी हो तो मोबाइल काफ़ी लाभदायक है। मगर मोबाइल उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना ज़रूरत हो, वरना अपना मोबाइल की हानिकारक साइड ही दिखेगा। मैं जयंती परमार, हाउसवाइफ।
6: Yes, I feel people are getting too addicted to their cell phones because in today's fast growing world, cell phones have become a necessity. Cell phone provides all kind of information like Google Maps, video calling, newspaper, entertainment, etc. And it is a very easy way to access a cell phone. For example, even a baby is able to use a phone to watch rhymes and cartoons by itself. And that is the reason people are too busy with their cell phones. I think it has many disadvantages also, like people are getting mentally affected and communication within people have reduced, and it has also made people very lazy. So I think people should understand the fact that phones are to be used for necessity and not for one's entertainment. I'm Nikita.
7: मेरी राय मोबाइल एडिक्शन में यह है कि हाँ, आज के ज़माने में मोबाइल एडिक्शन बहुत बढ़ी है। पहले से देखे तो अब हर जन को मोबाइल चाहिए। मोबाइल एक ऐसी चीज़ हो गई जिससे हर काम आसान तो हो जाता है, बट इससे बहुत सारे काम उलझ भी जाते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आज देखा कि एक लड़का गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा था, वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते करते आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ, जैसे आपने मुझे कुछ देर पहले पूछा था, क्या मोबाइल एडिक्शन चीज़ें बिगाड़ सकती है, किसी हद तक ये चीज़ बिगाड़ सकती है। जैसे कि मेरा एक दोस्त का ही उदाहरण ले लो, उसके हाथ में हमेशा मोबाइल रहेगा, भले ही कोई मैसेज या कोई फ़ोन आया हो या ना हो, बट उसके हाथ में हमेशा ही रहेगा। इससे क्या होता है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ से दूर रहते हैं, जैसे फैमिली फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर आप मुझे पूछो तो मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हर एक काम कर सकती है, एक कॉल से लेकर एक प्रेजेंटेशन। मेरा खुद का ही उदाहरण ले लो कि मेरे सब हद से ज़्यादा मेरे प्रोजेक्ट्स मोबाइल से ही हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से हमारा इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों से कम होता रहता है, हमारी स्टडीज या फिर हमारे काम में इंटरप्ट होता रहता है। मैं प्रकाश और मैं अपनी BBA की पढ़ाई कर रहा हूँ।
8: The mobile phone is one of the greatest invention in the 20th century. We can't imagine how is our life without the mobile phone. It is an obvious truth that the mobile phone gives benefits in some aspect of life. Using mobile phones distribute our communication to make it easier than the before. Besides, the mobile phone can provide us with lot of functions like relaxing with music, chatting or playing games. However, today people, especially young people, are becoming addicted to the using the mobile phones. They can't stay away from their phones even for a minute. Perhaps because of the benefits of the mobile phone, most of the people do not realize lots of negative effects that the mobile has brought to us. Using mobile phone too much not only affect our health seriously but also cause some personal problems and limiting communication face to face. In the high technology world, people can chat together for hours whenever they have time. They talk together from hour to hour, from day to day. As a result, using mobile phone for a long time affect our health. Do you know how dangerous the waves from the cell phone is for our brain? Brain is seriously damaged when using mobile phone too much. Our life is becoming more convenient and the mobile phone has become an indispensable object. People use mobile phone in every place, every time to manage their business. Even when they are on the road, a lot of drivers listen to the cell phone. Consequently, they can cause dangerous accident. Mobile phone is really necessary for our life because of many convenient functions of it. However, sometimes mobile phone can cause us many problems. The advantages or disadvantages of using mobile phone depends on the way how we can use it, in the right way or in the wrong ways. Thank you.
2: आपके विचार हमारे साथ बांटने के लिए धन्यवाद। पीछे छूट गए अब उनके परिवार वाले, जो रो रहे अपनी किस्मत को हारे, सोच रहे बड़ी गूढ़ता से कि क्यों किया मोबाइल इनके हवाले।
1: बिल्कुल सही कविता बोली है। सबको इतनी लत लग गई है इस मोबाइल की, जैसे परिवार की जगह ले लिया इस मोबाइल ने।
0: 13 से 35 वर्ष के सभी लोग इस मोबाइल के गुलाम हैं। पहले कहते थे सुबह उठकर पहली चीज भगवान का नाम लेना चाहिए और रात में आखिरी चीज भी भगवान का नाम होना चाहिए, पर आज तो सब कुछ बदल गया है।
1: हाँ, सुबह उठकर पहले लोग मोबाइल देखते हैं और रात में सोते वक्त भी पहले मोबाइल ही देखते हैं।
0: जिनको मोबाइल एडिक्शन होता है उनको तो बीच रात में भी उठे तो मोबाइल चेक करने की आदत है, और हर वक्त उनको ऐसा लगता है कि मोबाइल बज रहा है या फिर मैसेज आया है। मोबाइल से दूर रहना उनके लिए असंभव है। चलो इसी बात पे मैं तुम्हें एक कविता सुनाती हूँ। ऐसी लत लग गई है कि छूटी नहीं, आदत SMS करने की फूटी नहीं, पिछले हफ्ते का रिचार्ज खत्म होने को है पर उंगली है कि रुकती नहीं।
1: वाह वाह, तू तो कवियत्री बन गई या फिर एक्सपीरियंस है।
0: जैसे तू समझे, पर ये तो आजकल सबकी कहानी है। भले बाहर दो दिन नहीं खाएंगे और वही पैसे बचाकर रिचार्ज करवाएंगे।
1: बिल्कुल, सबकी यही आदत कर दी इस मोबाइल ने। ये तो बहुत हुआ हंसी मजाक, अब आते हैं सीरियस टॉपिक पे। मोबाइल की रेडिएशन की वजह से बहुत लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी होती है। तो चलो जानते हैं मिस्टर सूर्य कुमार, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ TA स्टडी सर्कल मद्रास, कंसल्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन से इसके क्या असर होते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है।